हजुर, कार्यक्रमको रूपरेखाको जानकारी पछि अब हामी लाग्दछौ रोल्पा जिल्लामा सञ्चालनमा आएका संचार माध्यमका नम्बरको जानकारी गराउनतर्फ। रेडियो रोल्पा 086-440-101, रेडियो जलजला 086-440-271, रेडियो सुनसरी 97-4-88-85-814, रेडियो मालसरी 086-440-172, रेडियो होलेरी 98-47-78-88 र 98-5-78-58-78, रेडियो मारियावा 086-416-141, रेडियो पल्लवी 98-2-98-09-130, रेडियो जन्मभूमि 98-4-78-39-414, रेडियो सूर्यमुखी 98-5-78-26-501, अनलाइन रेडियो त्रिवेणी 98-6-49-63-269, रोल्पा समाचार साप्ताहिकी 97-4-85-00-275, रोल्पा खबर साप्ताहिकी 98-6-69-22-823, सन स्टार साप्ताहिकी 98-4-78-672, जलजला पोस्ट साप्ताहिकी 98-4-78-04-090, जुन साप्ताहिकी 97-4-99-90।

सृजना घरती मगर, ओम भक्त घरती मगर, मनीषा घरती मगर, नोखीराम घरती मगर, चंद्रा घरती मगर, रोशन घरती मगर, पुरन घरती मगर, राजमी घरती मगर, एमसरी रोका मगर, पूर्णिमा पुन मगर, सुनामती घरती मगर, रेजिना घरती मगर, रोहिना घरती मगर, पनातीहरू गणेश घरती मगर, सुशान घरती मगर, स्वर्गीय छोरी थगी पुन मगर, स्वर्गीय ज्वाई जगमन पुन मगर, नाती नातिनीहरू दान बहादुर पुन मगर, सुक्राम पुन मगर, बेलु पुन मगर, धाती बुढा मगर, देउर तथा देउरानीहरू स्वर्गीय महासुर घरती मगर, हिम्ती घरती मगर, स्वर्गीय सुरवीर घरती मगर, स्वर्गीय नन्दीकला घरती मगर, स्वर्गीय जिमराज घरती मगर, स्वर्गीय सावित्रा घरती मगर, भतिजीहरू

दुखी एवं मर्माहित भएका छौ। दुःखको यस घडीमा मृत आत्माले स्वर्गमा बास पाओस् भनी भगवानसँग प्रार्थना गर्दछौ। स्वर्गीय श्रीमान अनराम घरती मगर, छोरा बुहारीहरू दिले घरती मगर, मणि घरती मगर, चन्द्रबहादुर घरती मगर, गायत्री घरती मगर, इन्द्रबहादुर घरती मगर, पवित्रा घरती मगर, नाति नातिनाहरू सूर्य घरती मगर, दिलमाया घरती मगर, भुवन घरती मगर।

पुन मगर बबिता घरती मगर निमकली पुन मगर भतिजा भतिजीहरू खिम बहादुर घरती मगर खम्मी घरती मगर बल बहादुर घरती मगर देवमाया घरती मगर बालकुमारी पुन घरती मगर रविन्द्र घरती मगर सन्ध्या पुन घरती मगर भीम बहादुर घरती मगर वीरमती घरती मगर लगायत सम्पूर्ण घरती परिवार रुन्टीगढी गाउँपालिका।

घरती मगरको यही मिति 2083 साल भाद्र 22 गतेका दिन 91 वर्षको उमेरमा भएको असामयिक निधनले हामी अत्यन्तै दुखी एवं मर्माहित भएका छौ। दुःखको यस घडीमा मृत आत्माले स्वर्गमा बास पाओस् भनी भगवानसँग प्रार्थना गर्दछौ। स्वर्गीय श्रीमान अनराम घरती मगर, छोरा बुहारीहरू दिले घरती मगर, मणि घरती मगर, चन्द्रबहादुर घरती मगर, गायत्री घरती मगर, इन्द्रबहादुर घरती मगर, पवित्रा घरती मगर, नाति नातिनाहरू, सूर्य घरती मगर, दिलमाया घरती मगर, भुवन घरती मगर, सृजना घरती मगर, ओम भक्त घरती मगर, मनिषा घरती मगर, नोखीराम घरती मगर, चन्द्रा घरती मगर, रोशन घरती मगर, पुरन घरती मगर, राजमी घरती मगर, एमसरी रोका मगर, पूर्णिमा पुन मगर, सुनामती घरती मगर, रेजिना घरती मगर, रोहिना घरती मगर, पनातीहरू गणेश घरती मगर, सुशान घरती मगर, स्वर्गीय छोरी थगी पुन मगर, स्वर्गीय ज्वाई जगमन पुन।

बुढा मगर देउर तथा देउरानीहरू स्वर्गीय महासुर घरती मगर हिम्ती घरती मगर स्वर्गीय सुरवीर घरती मगर स्वर्गीय नन्दीकला घरती मगर स्वर्गीय जेमराज घरती मगर स्वर्गीय साबित्रा घरती मगर भतिजीहरू दुमा पुन मगर खिमी पुन मगर मना पुन मगर तारामती बहगरी विष्णु घरती मगर कृष्णी पुन मगर देवमती घरती मगर पुष्पा पुन मगर बबिता घरती मगर निमकली पुन मगर भतिजा भतिजीहरू खिमबहादुर घरती मगर खम्मी घरती मगर बलबहादुर घरती मगर देवमाया घरती मगर बालकुमारी पुन घरती मगर रविन्द्र घरती मगर सन्ध्या पुन घरती मगर भीम बहादुर घरती मगर वीरमती घरती मगर लगायत सम्पूर्ण घरती परिवार रुन्टीगढी गाउँपालिका।

0: जागा मैं बीते कई वर्षों के बाद, नहीं आता पता कुछ था, मैं सोया था कहीं गैप था, मैं सोया था बड़ी तेज आवाज़ सी, कौन सी बिजली, चलना है तुझे चलना है, कहने लगा मैं खुद से, परेशान होता हूँ जब जब टक्कर हो जाती खुद से, लेकिन अब धीरे धीरे समझने लगा हूँ, जो दिल से बोले उसे पहचानू, उल्टा बोले थप्पड़ चालू, फूट डाले घर से निकालू, प्यार करे भल कर बा बोले, सब समेट संभाल के बोले, जीवन ट्रैफिक वर्क गोले, सूझबूझ से रास्ता खोले, चला चलू मंजिल की ओर, शोर करे चाहे लोग बिफोर, किसी ने कहा चुपचाप सुनो, कोई तुम्हें पुकार रहा, जरूरत है तुम्हारी, किसी को दर्द से कर्रा रहा, आवाज आने लगी मैं सुन।
1: वाह
2: क्या दावी
3: पूरा, थैंक यू।
2: तिमीलाई होइन तिमीले लगाएको गहना पो, वाह क्या दामी भनेको
3: हो र, म त मलाई पो भनेको होला भनेको।
2: तिमी पनि त्यतिकै राम्रो छौ, तर तिमीले लगाएको गहना त छनै दामी, साँच्चै कहाँबाट बनाएको हो तिमीले?
3: यो त रोल्पाको होलेरी बजारमा रहेको अनुराधा सुनचादी पसलबाट हो नि।
2: हजुर, हामी कहाँ ग्राहकको डिजाइन अनुसार गरगहना बिक्री मरमत सुपथ मूल्यमा गरिन्छ। पुरानो गहनासँग नयाँ गरगहना सटही गरिन्छ। साथमा तिलहरी, फुली, मुन्द्री, मारवाड़ी, झुम्का, सिक्री, औठी लगायत नयाँ तथा पुराना डिजाइनको गहनाहरू स्थानीय दक्ष कारीगरबाट सस्तो मूल्यमा निर्माण तथा बिक्री गरिन्छ।
3: एक पटक सेवा गर्ने मौका दिनुहोस्।
2: प्रोप्राइटर हेमराज रसाइली, सम्पर्क नम्बर 97422 51881।
3: अनुराधा सुनचादी पसल, रुन्टीगढी 6 होलेरी, प्रहरी चेक पोस्ट नजिकै रोल्पा।

टिप्पी लग्यो मिति पुग्यो चारेर तर्दैन त्यो इन्द्रै बिन्ती गरून् झुकेर पदमा त्यो बिन्ती मान्दैन त्यो हार्दिक श्रद्धाञ्जली ए सिरुल्पा जिल्ला रुन्टीगढी गाउँपालिका एक लापाल निवासी गौमती घरती मगरको यही मिति 2083 साल भाद्र 22 गतेका दिन 91 वर्षको उमेरमा भएको असामयिक निधनले हामी अत्यन्तै दुखी एवं मर्माहित भएका छौ। दुःखको यस घडीमा मृत आत्माले स्वर्गमा बास पाओस् भनी भगवानसँग प्रार्थना गर्दछौ। स्वर्गीय श्रीमान अनराम घरती मगर, छोरा बुहारीहरू दिले घरती मगर, मनी घरती मगर, चन्द्रबहादुर घरती मगर, गायत्री घरती मगर, इन्द्रबहादुर घरती मगर, पवित्रा घरती मगर, नाति नातिनाहरू, सूर्य घरती मगर, दिलमाया घरती मगर, भुवन घरती मगर, सृजना घरती मगर, ओम भक्त घरती मगर, मनीषा घरती मगर, नोखीराम घरती मगर, चन्द्रा घरती मगर, रोशन घरती मगर, पुरन घरती मगर, राजमी घरती मगर, एमसरी रोका मगर, पूर्णिमा पुन मगर, सुनामती घरती मगर, रेजिना घरती मगर, रोहिना घरती मगर, पनातीहरू गणेश घरती मगर, सुशान घरती मगर, स्वर्गीय छोरी थगी पुन मगर, स्वर्गीय ज्वाई जगमन पुन मगर, नाति नातिनीहरू दान बहादुर पुन मगर, सुखराम पुन मगर, बेलु पुन मगर, धाती बुढा मगर, देउर तथा देउरानीहरू, स्वर्गीय महासुर घरती मगर, हिम्ती घरती मगर, स्वर्गीय सुरवीर घरती मगर, स्वर्गीय नन्दीकला घरती मगर, स्वर्गीय जिमराज घरती मगर, स्वर्गीय सावित्रा घरती मगर, भतिजीहरू।

पुन मगर बबिता घरती मगर निमकली पुन मगर भतिजा भतिजीहरू खिम बहादुर घरती मगर खम्मी घरती मगर बल बहादुर घरती मगर देवमाया घरती मगर बालकुमारी पुन घरती मगर रविन्द्र घरती मगर सन्ध्या पुन घरती मगर भीम बहादुर घरती मगर वीरमती घरती मगर लगायत सम्पूर्ण घरती परिवार रुन्टीगढी गाउँपालिका।

दुखी एवं मर्माहित भएका छौ। दुःखको यस घडीमा मृत आत्माले स्वर्गमा बास पाओस् भनी भगवानसँग प्रार्थना गर्दछौ। स्वर्गीय श्रीमान अनराम घरती मगर, छोरा बुहारीहरू दिले घरती मगर, मणि घरती मगर, चन्द्र बहादुर घरती मगर, गायत्री घरती मगर, इन्द्र बहादुर घरती मगर, पवित्रा घरती मगर, नाति नातिनाहरू सूर्य घरती मगर, दिलमाया घरती मगर, भुवन घरती मगर, सृजना घरती मगर, ओम भक्त घरती मगर, मनीषा घरती मगर, नोखीराम घरती मगर, चन्द्रा घरती मगर, रोशन घरती मगर, पुरन घरती मगर।

घरती मगर रोहिना घरती मगर पनातीहरू गणेश घरती मगर सुशान घरती मगर स्वर्गीय छोरी थगी पुन मगर स्वर्गीय ज्वाई जगमन पुन मगर नाती नातिनीहरू दान बहादुर पुन मगर सुखराम पुन मगर बेलु पुन मगर धाती बुढा मगर देउर तथा देउरानीहरू स्वर्गीय महासुर घरती मगर हिम्ती घरती मगर स्वर्गीय सुरवीर घरती मगर स्वर्गीय नन्दीकला घरती मगर स्वर्गीय जिमराज घरती मगर स्वर्गीय साबित्रा घरती मगर भतिजीहरू दुमा पुन मगर खिमी पुन मगर मना पुन मगर तारामती बहगरी विष्णु घरती मगर कृष्णी पुन मगर देवमती घरती मगर पुष्पा पुन मगर बबिता घरती मगर निमकली पुन मगर भतिजा भतिजीहरू खिमबहादुर घरती मगर खम्मी घरती मगर बलबहादुर घरती मगर देवमाया घरती मगर बालकुमारी पुन घरती मगर रविन्द्र घरती मगर सन्ध्या पुन घरती मगर भीमबहादुर घरती मगर वीरमती घरती मगर लगायत सम्पूर्ण घरती परिवार रुन्टीगढी गाउँपालिका

साथी एवं मर्माहित भएका छौ। दुःखको यस घडीमा मृत आत्माले स्वर्गमा बास पाओस् भनी भगवानसँग प्रार्थना गर्दछौ। स्वर्गीय श्रीमान अनराम घरती मगर, छोरा बुहारीहरू दिले घरती मगर, मणि घरती मगर, चन्द्रबहादुर घरती मगर, गायत्री घरती मगर, इन्द्रबहादुर घरती मगर, पवित्रा घरती मगर, नाति नातिनाहरू सूर्य घरती मगर, दिलमाया घरती मगर, भुवन घरती मगर, सृजना घरती मगर, ओम भक्त घरती मगर, मनीषा घरती मगर, नोखीराम घरती मगर, चन्द्रा घरती मगर, रोशन घरती मगर, पुरन घरती मगर, राजमी घरती मगर, एमसरी रोका मगर, पूर्णिमा पुन मगर, सुनामती घरती मगर, रेजिना घरती मगर, रोहिना घरती मगर, पनातीहरू गणेश घरती मगर, सुशान घरती मगर, स्वर्गीय छोरी थगी पुन मगर, स्वर्गीय ज्वाई जगमन पुन मगर, नाति नातिनीहरू दान बहादुर पुन मगर, सुक्राम पुन मगर, बेलु पुन मगर, धाती बुढा मगर, देउर तथा देउरानीहरू स्वर्गीय महासुर घरती मगर, हिम्ती घरती मगर, स्वर्गीय सुरवीर घरती मगर, स्वर्गीय नन्दीकला घरती मगर, स्वर्गीय जेमराज घरती मगर, स्वर्गीय साबित्रा घरती मगर, भतिजीहरू दुमा पुन मगर, खिमी पुन मगर, मना पुन मगर, तारामती बह गरी विष्णु घरती मगर, कृष्णी पुन मगर, देवमती घरती मगर, पुष्पा पुन मगर, बबिता घरती मगर, निमकली पुन मगर, भतिजा भतिजीहरू खिम बहादुर घरती मगर, खम्मी घरती मगर, बल बहादुर घरती मगर, देवमाया घरती मगर, बालकुमारी पुन घरती मगर, रविन्द्र घरती मगर, सन्ध्या पुन घरती मगर, भीम बहादुर घरती मगर, वीरमती घरती मगर लगायत सम्पूर्ण घरती परिवार रुन्टीगढी गाउँपालिका उडान